पौड़ी जिसे वै सुख पाई है साहिब सदा संभाली है जित किता पाई अपना सकाल बरीक उकाली है मंदा मूल न की चई दिल मिन अदर निहाली है जो साहिब नाल ना हारी है ते वेह पासा ढाली है पिछला है उपर काली है पिछला है उपर काली है।

पौड़ी नानक अंत न जापनी हरता के परवर आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक नागली जंजीर एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार।

नानक गुरमुख सहज मिलै, सच्चे स्यों लिबलाऊ। महला तीजा। ए मन ऐसा सतगुर खोज लह, जित सेवै जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवै, हौ मैं शब्द जलाए। कूड़ै की पाल विच्चों निकलै, सच वसै मन आए। अंतर शांत मन सुख होए, सच संजम कार कमाए। नानक पूरै कर्म सतगुर मिलै, हर जियो कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसकै घर दीवान हर होवै, तिसकी मुट्ठी विच जगत सब आया। तिसको तलकी किसै दी नाही, हर दीवान सब आण पैरी पाया। मानसा कै हो दीवान हो, कोई नस भज निकलै। हर दीवान हो कोई किथे जाया। सो ऐसा हर दीवान वसिया, भगतां कै हिरदै

नानक दे कर हथ निमाणियों के मान, नेताणियों के तान, नेओटियों की ओट, नेआसरियों के आसरा, तन तन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज।

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सकत काल नानक ते मुख उडले केती छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

आनंद गुणी निधान निमाण्यो के मान नेताण्यो के तान ने ओटे हो की ओट।

सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डराऊं रे सखी सहेली ननद गहेली देवर के ब्रह जराऊं रे मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो किन बिद रहन रहौ रे से जय रमत नैन नहीं पेखा एह दुख का सौ कहौ रे बाप साहब का कर लड़ाई माया सदमतवारी बड़े भाई के जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बदया मैं राम रमत सुख पाया लिखे कतहे ना छूटिए खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुख टल गुर सेविया एहनिस सहज सोभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला सतगुर पूरे पाणा ता जपिया नाम रमाणा

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, सो कहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाई, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जा होवे, सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोहीयन, सवना दाविसाहु, सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोहीयन, सवना दाविसाहु, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जन को पूरन दीजै हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जन को पूरन दीजै हाँ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछुरे थे मादा एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवा चेर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे मादा एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवा चेर पयो दर्शन देखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त कायं रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वछलिया नाथ नाथी शरण नानक पुरख अचुत है बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम न

कर कीरत आखिए करते का होय विचारो। तेत कार गाव हो सोहिला सिव रिहो सिर जनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभौ का सोहिला हो बारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवै साहब स्यों मेल। घर घर एहो पाहो चा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोए रहाओ। बेसोए चसया घड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती धूप माले आन लो पवन चवरो करे। सगल बनराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह जानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पाव खंडा हे। अवनासी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की वेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला। औद घटे दिन सरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई विहाज हो हर गुरते मन है बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूर। नानक दास एह सुख मांगे मोको कर सा।

0: सचे तेरे खंड, सचे ब्रह्मांड, सचे तेरे लो, सचे आकार, सचे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुझे आखे लख करो, सच्चे सप्तान, सच्चे सब जोर, सची तेरी सिफत सची साला, सची तेरी कुदरत सचे पातशाह, नानक सच त्यायन सच, जो मर जमे सुकच निकच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच न्याओ, वड्डी वड्याई जा निचल थाओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ, वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ, वड्डी वड्याई जा पुछना दात, वड्डी वड्याई जा आपे आप नानकार नकतनी जाए, कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
0: एहो जग सचे की है कोठड़ी, सचे का जवा सिकनो हुक्म समाई ले।

मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार कड़ पांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चर चर पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सत।

सचता पर जानिया जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सचता पर जानिया जा सच तरे प्यार ना हो सुन मरे सियता पाए मुख द्वार सचता पर जानिया जा जुगत जाने जियो तरतकाया साध के विच देख करता भी हो सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की कुछ पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सबना हुए दारू पाप कड़े धोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पुड़ दान मिंडा तलिख।

छोड़नार गान मन बोहे अगाय, छोड़नार गान मन बोहे अगाय, मारो कंटक काल गरज तावत लियो बरज, पंच भूत एक कार राख ले समाज, जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सा रथ।

जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहरशील स्नाओ सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गोर पर समरार दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरह गुर जग

0: सदा कल्लिव रहे करम स्विश्चाचार दुरम स्फूर जो निवे खवे कस्म विचार यह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज भय संचयो किरन मत कर बाणी गुर गम परमान तै पायो सत संतोख समारयो हर परसो कल समुल वै जन दर्शन लेने पयो मन विश्वास पायो गहर गोदर दियो गर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विकास जाग्यो लख कलतरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रवे समान निरंतर उदारो चित दारिद हरण बिखंते कल मल तरसन सद रंग सहज कल उचर जस जंप लहन रसन नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम स्वर्ण रैबो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट रवलो ए दर्शन परसै गुरु कै अठ सठ मज्जन होए दर्शन परसै गुरु कै अठ सठ मज्जन होए
1: सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ साच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शबद सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु कै साजन परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु कै साजन परवान
2: अमै दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नवनि दरियाओ जन्म हम काल धोवे सो कहो टल गुरु सेविया अहनिस सहज सपाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए कन हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावे रव सस किरण उदर सागर को गंगा

0: चित चितमो अरदास कहो पर कह बिन सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत तो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करन जेव तू रखे है तेव रहो गुर ज्ञान अर ध्यान तत् सो तत् मिलावे सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत ना तावे निरंकार के बसे देश हुक्म बुझ विचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन करन समर्थ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसे सिरे सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चेतै बसै
1: तै पढ़ियो एक मन तरियो एक कर एक पछाणियो नैन बैन मोहे एक एक दोए थाए न जानियो सुपन एक परतख एक एक समह लीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे राख लखों अलख है एक

मानस सहज सुपाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख होए सिफ तख संबंधी, नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पात मल जन। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही सब नांद। सज्जन सच्चा पात साहु सिर सांद, जिस पास बैठिया सोही सब नांद वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

तो प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगो किस थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगो किस थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो, काट काट राव रहया बनवारी, जल थल महियल गुपतो वरत, गुर शब्दी देख निहारी जियो, रहाओ मारत पयाल आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा धारी जियो, सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, काट पीतर देख मुरारी जियो, जन्म मरण को एहो जग बपड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो, सत

सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ना गर्भ मझारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्भ मझारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किश थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। ओड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी।